0: रसधारा।
1: सो देवी और सज्जनों, आज का राम रसधारा सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। चलते चलते कल अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तजनों के साथ। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर सेगमेंट किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। धन्यवाद जो मैं उपस्थित चार बहनों को समाप्ति मंत्र और शांति पाठ बहनों की वाणी में। अगली गुरुवार को फिर से मिलते हैं राम रस धारा सत्संग में। संजय भाई की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान,
2: जय सिया राम।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते। हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। 14 सितंबर एगो ऐसन तारीख है जहां पर हर बरिस दक्षिण अफ्रीकी लोग अपन हेरिटेज डे मनावे लंसा, मतलब कि धरोहर के राष्ट्रीय दिवस। ये एगो आम छुट्टी के दिन है और दक्षिण अफ्रीकी लोग खातिर ये एगो बहुत खास समय है अपन संस्कृति मनावे के और ओके प्रोत्साहित करे के। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीकी लोग के अपन इलाकाई परंपरा और समृद्धि मनावे के भी दिन है। दक्षिण अफ्रीकी देश और दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका देश अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे निचला भाग में पावल जाला। इस देश के विभिन्न इकोसिस्टम भी इमें शामिल बा। इमें बा समुंदर तट, खाई, जंगल और समुंदर। साउथ अफ्रीका के मशहूर जगह के गिनती में वेस्टर्न केप, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन और टेबल माउंटेन आवेला। ये सब बहुत मशहूर हेरिटेज साइट है हुआ के और हुआ पर अनगिनत किस्म के जंगली जानवर भी बा जे लोग खुला प्रकृति में चले लंसा। और इमें शेर, हाथी, रिनोसेरोस, हाइना, चीता और लंगूर भी शामिल बा। दक्षिण अफ्रीका के दिलचस्प जानकारी कुछ इस प्रकार से बा। इस देश में 11 गो औपचारिक भाषा बोलल जाला। दक्षिण अफ्रीका के जनता के सामान्य उम्र, उ लोग के जो एवरेज एज है वो 27 बरिस है और यही दुनिया के सबसे जवान जनता में से एगो है। इस देश के 3 गो मुख्य केंद्रीय शहर के गिनती में केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएम फाउंटेन आवेला और हर एक शहर सरकार के एगो शाखा है। केप टाउन इंसान के दिल के ट्रांसप्लांट करे होला पहला जगह जो 1967 में स्थापित हो रहा। और यही देश में दुनिया के सबसे बड़ा हीरा डायमंड भी बा जो 3000 कागा से जस्ती और जेकर वजन 1.3 पाउंड है। दक्षिण अफ्रीका वो अकेला देश है जे अपन परमाणु हथियार प्रोग्राम के त्याग देले बा। लेकिन दुख के बाद बाकी दक्षिण अफ्रीका में HIV के जो दर बा वो दुनिया में सबसे ऊंचा है और इस देश में एक ही गो काम के पगार में सबसे बड़ा असमानता है, मतलब कि एक ही गो काम खातिर अलग अलग इंसान के अलग अलग पगार मिलेला। दक्षिण अफ्रीका में विरासत दिवस कैसे मनावल जाला? इस दिन हुआ के जनता सैनिक परेड, सामाजिक जुटाव और इस देश के इतिहास पर विशेष प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन करे लंस जेकर से इस देश के दिलचस्प इतिहास पर अच्छा जानकारी सक पावे। दक्षिण अफ्रीका जोन काला और गोरा के बीच फर्क के अपोसेट के रूप देले रहल, एकर इतिहास में मशहूर अफ्रीकी लोग के विशेष योगदान बा और ई विशेष ई बड़ा हस्ती लोग में हवंजा नेल्सन मंडेला, क्रिस्टिया ओबियानो, डेसमोंड टुटू और गैरी प्लेयर और महात्मा गांधी भी हुए के दौरा करके वापस भारत लौटे बखत मॉरिशस आरलन और मॉरिशस के नक्शा बदले में उनकर ई दौरा बहुत विशेष रहल। गोरा यूरोपीय, काला अफ्रीकी और भारतीय लोग के आबादी होला ई देश के दौरा करला पर भी ई दिन दुनिया भर के गोरा यूरोपीय लोग, काला अफ्रीकी लोग और भारतीय लोग के मिलल जुलल आबादी होला ई देश के दौरा करे पर भी ई दिन दुनिया भर के प्रोत्साहित करेला, मतलब कि ई जोन हेरिटेज डे है एगो मौका है दक्षिण अफ्रीका के ई दुनिया भर के जनता लोग के आमंत्रित करे के ओकर

0: दौरा करे खातिर और असल में 24 सितंबर के शाका डे नाम देवल कर रहल कहे कि यही दिन जुलू जेकर राजा के नाम शाका रहल उ गुजर गइलन त 24 सितंबर 1828 के शाका साउथ अफ्रीका के एगो मिला जुला राष्ट्र बनावे में बड़ा भूमिका निभैलन त ई वजह से ई देश के ई राष्ट्रीय दिवस के शाका डे नाम से भी जानल जाला कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद नमस्ते
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर

0: हैं कानून समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत। सुर्खियां इस प्रकार हैं। भाषा के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संविधान में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि राज्यसभा में भाषाओं पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने पुश्तैनी भाषाओं के समर्थकों सहित सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। दशकों पुराने कूटनीतिक संबंध और सहयोग के नए रास्ते, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज दोपहर बाद मॉरिशस में फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये से मुलाकात की। दोनों देशों के करीबी संबंधों पर चर्चा हुई और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर। कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों को फ्रेंच सिखाने के नए तरीकों पर लैंस्टिची फ्रांसे दे मॉरिस की दो दिनों की कार्यशाला आयोजित। प्रतिभागियों ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए पढ़ाने के तरीकों पर काम किया। विदेश समाचारों में भारत के ग्रेटर नोएडा में चलती बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत। दिल्ली से मुहब जा रही बस में करीब 45 यात्री सवार, पुलिस हादसे की जांच कर रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन पहुंचने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। दोनों देशों की 3 दिनों की शिखर वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका ने व्यापार को लेकर बनी अस्थायी सहमति 10 जनवरी तक बढ़ाने की घोषणा की। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। बरसात का मौसम करीब है। बाढ़ का खतरा कम करने के लिए नालों और नदियों की सफाई कहां तक पहुंची है, इसी पर लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने आज पोटलिस नगर पालिका में बैठक लगाई। बैठक में जरूरी मरम्मत के कामों के साथ साथ नालों की सफाई के लिए दी गई राशि के इस्तेमाल पर भी बात हुई। भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की है। ये बात आयोग ने राज्यसभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही। ये दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रियोल मॉरिशियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रसभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग आज दोपहर बाद हिंदू कमांड प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल कराने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजीशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। दशकों पुराने कूटनीतिक संबंध और सहयोग के नए रास्ते, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज दोपहर बाद मॉरिशस में फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये से मुलाकात की। अपनी पहली मुलाकात में दोनों महानुभावों ने दोनों देशों के करीबी संबंधों पर चर्चा की, खास पर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं देखी गई। क्रिसन सिचा की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान।
1: मॉरिशस में फ्रांस के राजदूत का पद संभालने के 2 सप्ताह से ही कम समय के बाद अलेक्सी लॉये ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। इस दौरान अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: Nos deux pays partagent une relation que je qualifierais de singulière, tant elle est riche dans plein de domaines, hein, que ce soit le domaine économique, on a parlé un peu du domaine de l'éducation aussi, où j'ai eu l'occasion de participer au lancement d'un programme d'implantation de filières d'excellence bilingue dans 24 établissements scolaires, en fait, à Maurice et à Rodrigue, en présence du ministre de l'Éducation, donc c'est un sujet très très fort aussi, en domaine culturel. C'était l'occasion... Pour le Premier ministre et moi d'aborder les différentes facettes de cette relation extrêmement riche et qui va continuer à s'enrichir.
1: Mauritius et France qui bahupakshavad ki prati saajha pratibaddhata aur antarrashtriya vivadon ka

0: समाधान कानून के आधार पर किए जाने का मुद्दा भी इस मुलाकात में चर्चा के केंद्र में रहा।
1: इससे पहले इसकी चर्चा कर रहे थे, राज्यसभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग आज दोपहर बाद हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल करने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजिशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। रिपोर्ट याचना मिश्रा।
2: हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की मांग की। संगठन के सदस्यों का कहना है कि भोजपुरी मॉरिशस की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
3: Nous sommes un pays multiracial, mauricien. La langue principale c'est créole qui nous compte. Mais après créole, c'est Bhojpuri. Dans la campagne surtout, beaucoup de monde cause Bhojpuri. Beaucoup de communautés causent Bhojpuri. Si nous acceptons Bhojpuri là, alors nous avons un vieux monde capable de comprendre ce qui peut passer dans le Parlement. Nous pouvons laisser l'autorité travailler de toute l'indépendance qui nous a fait faire pression et nous peut faire une demande.
2: संगठन ने सरकार से अपील की कि इस मांग पर विचार किया जाए और राष्ट्रीय सभा में भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं।
1: एक ही कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों को फ्रेंच कैसे सिखाएं, इसी पर लेस्टिचे फ्रांसे दे मोरिस की ओर से दो दिनों की शिक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के लिए पढ़ाने के लिए नए तरीकों पर काम किया। इंडियन ऑयल के साथ नए ईंधन आपूर्ति समझौते के बाद पहली खेप मॉरिशस पहुंच गई है। इसे लेकर जहाज थॉमस प्लैंडिड बुधवार को पोर्टलिस बंदर का पहुंचा। व्यापार मंत्री भी खेप के आगमन पर वहां मौजूद थे। पेश है ये रिपोर्ट।
0: 10 दिनों की यात्रा के बाद एमएस टॉम स्प्लेंडिड मॉरिशस पहुंचा। इसके नमूने पहले ही जांच के लिए ले लिए गए हैं। गुणवत्ता की पुष्टि होते ही इस खेप को उतारा जाएगा और बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इंडियन ऑयल के साथ हुआ ये समझौता मॉरिशस के लिए ईंधन की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम है। व्यापार मंत्री माइकल सिकियन कहते
4: हैं,
0: इस कॉन्ट्रैक्ट में मॉरिशस के लिए दो अच्छे मुद्दे हैं। पहला, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है हम फिर से समझौता बातचीत शुरू कर सकते हैं, 30 दिनों की नोटिस देनी है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के 10 महीने बाद हम कह सकते हैं कि दाम ठीक नहीं है, फिर से बातचीत करनी
4: चाहिए।
0: अगर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है तो फिलिंग स्टेशन पर इसकी कीमत का सवाल अब भी बना हुआ है। मौजूदा बाजार में बिक रही पिछली खेप के आधार पर किए गए हिसाब से पेट्रोल की कीमत पहले ही 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा और डीजल की कीमत करीब 75 रुपए तक पहुंचने का अनुमान था। वहीं 22 सितंबर को दर्ज अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के आधार पर ये लागत और बढ़ सकती है। प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट की प्रक्रिया 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को रोकती है और 10% से कम की गिरावट को रोकती है। एक समय 60% तक ही रुके थे, क्योंकि जब 36% से बढ़ा था और हम 10% बढ़ा रहे थे तब हम 26% के फासले का सामना कर रहे थे। जमा करने वाले सभी टैक्स वित्त मंत्रालय मॉरिशस की जनता को वापस करता है। पेट्रोल और डीजल का प्रति लीटर 7.20 रुपए जमा होता है और हम सब्सिडी देते हैं। अगर ये 7.20 रुपए हटा देते हैं तब राशन का चावल 56 रुपए से बढ़कर कम से कम 150 रुपए हो जाएगा।
4: L'essence et diesel qui collecté par litre, 7.20 rupees par litre, et nous donne subside. Vous connaissez nous tiens ça 7.20 rupees là qui arrivait? Dire ration pour sortir 56 rupees pour venir au moins 150 rupees.
0: इंडियन ऑयल के साथ हुआ ये समझौता 5 साल की अवधि के लिए ईंधन की आपूर्ति को कवर करता है। वहीं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जरूरी हैवी फ्यूल ऑयल की आपूर्ति के लिए सहारा एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड ही मौजूदा सप्लायर हैं।
1: सुर्खियों हम इसका उल्लेख कर रहे थे, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नेशनल

0: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की है। ये बात आयोग ने राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही है। ये दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रेओल मॉरिशियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए।
1: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट पिछले अगस्त के अंत में मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट की सरिता बुधु द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद तैयार की गई। उनका कहना था कि मॉरिशस की पूर्वजों से चली आ रही भाषाओं को राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मॉरिशियन को शामिल करने के लिए बनाए गए सिलेक्ट कमेटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उनके अनुसार ये संविधान की धारा 16 का उल्लंघन हो सकता है। अपने पोजीशन पेपर में आयोग ने सबसे पहले कहा कि धारा 16 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ने सिफारिश की है कि सिलेक्ट कमेटी के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही क्रेओल मॉरिशियन से जुड़े काम में देरी नहीं होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सजीत बुलेल कहते हैं,
2: Mauricien, citoyen, du monde qui promouvoir que ce soit une langue ancestrale ou autre, devine qu'un sens déposé. Parce que c'est seul corridor de représentation qui est là. À part de ça, pas pour une seconde. Donc, pour nous, l'emphase, c'est interprète le terme of référence de façon bien élargie. Parce que pour beaucoup de monde, je peux penser que, comment dire, et un risque de marginaliser la langue ancestrale une contre l'autre. Ça a l'impression là pour dissiper quand nous considérons cette représentation. C'est moi nous peut dire aussi que de fois pas langage vient un outil communal, pas rentre dans sa la trappe là. Langage c'est nos héritages nationaux.
1: औपचारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए आयोग ने बताया कि 89% आबादी क्रेओल मॉरिशियन बोलती है, 8.6% लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, 5.6% फ्रेंच बोलते हैं, जबकि केवल 1.3% लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं जो संसद की आधिकारिक भाषा है। इसी आधार पर आयोग ने संविधान की धारा 16 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि भाषा के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोका जा सके।
2: Nous, les décideurs politiques, l'État, viennent avec un amendement du section 16, que ce soit maintenant ou que ce soit après un exercice de la Constitution Review Commission. Mais la section 16 vient révisiter pour qui le terme langage fait partie d'une demande prohibition contre toute forme de discrimination.
1: इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार से ये भी जांच करने को कहा है कि संसद में अंग्रेजी के इस्तेमाल और फ्रेंच के इस्तेमाल की अनुमति संविधान की धारा 1 के अनुरूप है या नहीं।
0: मौसम की चेतावनी मिले तो लोगों को ये भी पता हो कि खतरा कहाँ है और क्या करना है। इसी दिशा में मॉरिशस मौसम विभाग ने 2027 से 2031 तक की अपनी योजना पेश की है। इसमें मौसम के संभावित असर को समझाकर चेतावनी देना और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करना शामिल है। मकसद है खतरे के समय सभी मिलकर जल्दी कदम उठाएं। शेजा जुमन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। भारी वर्षा, अचानक बाढ़, सूखा और समुद्र में जल स्तर का बढ़ना, इन खतरों के चलते मौसम विज्ञान केंद्र अब से केवल निगरानी और पूर्वानुमान तक सीमित नहीं रह सकता है। वाक्वा के मौसम विज्ञान केंद्र से देश के लिए तैयारी और चेतावनी में एक भूमिका निभाने की मांग की जा रही है। बुधवार को सिविल सोसाइटी के ऑपरेटरों को पेश किए गए 2027-2031 की स्ट्रेटेजिक प्लान के सुझावों में से ये एक है। दस्तावेज में ऑब्जर्वेशंस में सुधार लाने के वास्ते डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्वानुमान और खासकर जानकारियों के प्रसारण की एक नई प्रणाली को लेकर
3: Dans sa prochaine 5 ans là, nous peut attendre qu'il y ait transforme météo, nos systèmes alertes pour changer, nos façons nous donne nos bonnes services climatiques pour changer. Par exemple, vous gagne alerte le téléphone. Les pas pour Zistex, peut-être les pour Pictorial. Nous appelons ça un impact matrix. Alors ça, impact matrix, ça, les pour finir, si, qui intensité ce système-là. Si peut-être pour lui peut gagner un gros lampe, vous trouvez pour lui pour en rouge, vous finissez qu'on est OK. Et

0: grand sens qui pour lui pour gagner la prix. Donc tout ça là, nous pour améliorer, nous peut penser que d'ici 2 ans, nous commençons capable faire ça dans de prévision là.
1: इसके अलावा इस योजना को अमल में लाए जाने के अंतर्गत विशेषज्ञों के बीच आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए साझेदारी के विकास की बात भी शामिल और साथ में फाइनेंसिंग की सुविधा प्राप्त कराने की बात भी.
2: C'est l'exercice qui guette l'avenir plutôt que guette le passé. C'est la capacité de la météo, station météo pour répondre à sa bande défi qui peut venir là. On connaît un plan stratégique qui fait au papier ça. Mais l'exécution, c'est mal job qui fait.
3: On passe de connaître le temps et le climat, mais de connaître vraiment les impacts pour les différents secteurs. Et donc, il faut travailler ensemble pour connaître qu'est-ce que les services météo doivent les fournir.
1: लेकिन एक चेतावनी काफी नहीं, खतरों का पता लगाना और साथ में जनता को तैयार भी करना है, संस्थाओं के साथ मिलकर कदम उठाना है ताकि हर एक को पता चले कि समय पर किस तरह के जरूरी कदम उठाने हैं.
4: Augmenter cette notion de early warning et aussi augmenter cette notion de community based early warning, ce sera très important parce que la communauté aussi doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire quand il y a une catastrophe.
5: Avec cette stratégie plan là, nous pour rapprocher les stakeholders et là, en ce faisant nous vous connaît qui bande précaution besoin prend.
1: इसके अतिरिक्त स्ट्रेटेजिक प्लान में उपकरणों का आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों में निवेश भी सम्मिलित. सरकारी नौकरी के समय निजी काम नहीं. सरकारी कर्मचारियों की निजी पेशेवर गतिविधियों पर अगस्त में जारी सूचना को लेकर सिविल सर्विस मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण दिया है. मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों के कोड ऑफ कंडक्ट में पहले से ही ये नियम मौजूद है. सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कर्मचारियों को अपने काम और ड्यूटी के समय का पालन करने की याद दिलाई गई. सीनियर परमानेंट सेक्रेटरी देवेंद्र गोपाल और सिविल सर्विस मंत्री राज पेंचा को सुनती हैं.
6: Si un fonctionnaire a envie de faire un détail privé de work, suivre procédure. Pas genre de procédures. Je vous ai gagné pour vous être accounting officer. It must not be within working hours. Il n'est pas besoin de conflit de travail. Qui fait une retire sa reminder là? Parce qu'il nous gagne une lettre depuis un boss person qui nous attire l'attention pour éviter un abus.
7: Tous les temps, il est comme ça. Au contraire, on connaît quand ça finit de diluer, il est plus pire que ça avant. Avant, il est comme ça, une fois qu'on est officier du gouvernement, ou à plein temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a rien. Mais éventuellement, finalement, une requête de la part de l'Union et quelques représentants du service public donnent sa permission-là. La LAN prend consultation avec PRB. Avec PSC. Problème-là, pas nous qui nous créons. Complète-là, pas nous qui nous créons depuis une bonne personne ou bien depuis une autre institution. Faut des gens qui viennent contre nous, faut des quelques personnes qui souffrent de ça, ils allent vers une bonne personne, ils me disent, trouvent de l'obligation de dire nous qui pour faire.
1: मन में श्रद्धा और चार धाम के दर्शन की अभिलाषा लिए मॉरिशस के 50 श्रद्धालु कल भारत के लिए रवाना हुए. वे चार धाम यात्रा में भाग लेंगे. इस यात्रा का आयोजन मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन ने कला और संस्कृति मंत्रालय एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कपड़ी मिलिटन और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से किया. याचना मिश्रा और पूजा सुकालु की ये रिपोर्ट पेश है. चार धाम यात्रा जिसे चार पवित्र धाम की यात्रा के रूप में जाना जाता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलकर बनी है. इसे हिंदुओं की सबसे पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है. मॉरिशस के इन निवासियों के लिए ये तीर्थ यात्रा विशेष महत्व रखती है.
8: ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम हमारे सीधे से संपर्क रख सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद ले सकते हैं.
9: Plusieurs places intéressantes, spirituelles. Once in a lifetime, nous est important que nous allons faire une religious trip.
10: Mais c'est vrai que ça peut être réussi pour nous. C'est tout un endroit là-bas, des temps un petit peu frais, un petit peu vrai. Que dans la ce beauté, c'est la nature, c'est là, ça qui m'en aurait découvert.
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर आयोजित ये इस वर्ष की तीसरी टोली है.
11: Nous gagnons beaucoup aide. Nous commençons par Air Mauritius. Nous gagnons tarif vraiment.

0: vraiment spécial. Et aussi, le ministère, la santé, tout ça, ben, by behen qui pial yatra, zogain un vaccin cadeau. L'équipe qui pial les aujourd'hui, zopé gain facilité hélicoptère. Paul Kedana, et ça nous dit un grand merci, l'honorable T. Samfol, qui finit de l'un grand coup de main, et aussi, sans oublier, l'ambassade l'aide.
1: ये तीर्थयात्री अगले 8 अक्टूबर को स्वदेश लौटेंगे। और विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं उनमें भारत की ग्रेटर नोएडा में चलती बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से महोबा जा रही बस में करीब 35 यात्री सवार थे। कुछ यात्रियों का कहना है कि आग लगने से पहले उन्होंने चालक को जलने की गंध के बारे में बताया था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। आशा गोविंद चितमन।
2: भारत के उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस पर बुधवार देर रात एक चलती बस में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। बस दिल्ली से महोबा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। आग बस के अगले हिस्से से शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में फैल गई। धुएं के बीच यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की। बचाव दल ने आग पर काबू पाया और कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों का इलाज चल रहा है। एक यात्री की शिकायत के अनुसार आग लगने से पहले बस में जलने की गंध आई थी। यात्रियों ने चालक और कंडक्टर को इसकी जानकारी दी, लेकिन बस तुरंत नहीं रोकी गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। आग लगने की सही वजह की जांच जारी है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है।
1: वेबसाइट ने जानकारी देने से रोका, लेकिन एआई एजेंट ने दूसरा रास्ता खोजा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के अनुसार ओपन एआई का ये एजेंट स्वास्थ्य आंकड़ों वाली सरकारी वेबसाइट की कुछ गैर सार्वजनिक फाइलों तक बिना अनुमति पहुंच गया। प्रधानमंत्री एंटोनियो अल्बनीज़ ने इसे अस्वीकार्य बताया। सरकार का कहना है कि अब तक किसी व्यक्ति की निजी स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंचने का प्रमाण नहीं मिला है। घटना की जांच जारी है। अमेरिका और चीन के बीच 3 दिनों की शिखर वार्ता शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन के पास हवाई अड्डे पर खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। लालकालीन और सैन्य सम्मान के साथ हुए इस स्वागत के बाद दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, टेक्निक और ताइवान जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की उम्मीद है। इसी बीच अमेरिका ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बनी अस्थायी सहमति 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

0: मौसम संबंधी जानकारियां इस रिपोर्ट में।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 24 से 26 और साहिली इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद मौसम सुहाना रहेगा। उत्तर पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बादल घिर आएंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज रात के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 5:57 पर सूरज निकलेगा।

गीता सुनारान की मौसम संबंधी रिपोर्ट के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद हम कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों लुडोविक और ठावनी को। कुछ ही समय में शोक समाचार। Avenue des Colombes, Médine Camp de Mascmé. Avenue des Colombes, Médine Camp de Mascmé. 62 साल के 62 years old की श्रीमती गायत्री जोन की, श्रीमती गायत्री जोन की पैदाशी नाम द्वाका, जो गायत्री नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के

एक बजे कल दिन के एक बजे उनके पति श्री दानन जुनकी के घर आवेली देकोलों मेजिन कांदे मास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कांदे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM बासे रोड कैटरबोर्न में चवालीस साल के 44 years old के श्री अश्विन नक्चेदी श्री अश्विन

संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रोमेशन टुमारो एट 1 पीएम Le Grand Branch Road, Grandbois में Le Grand Branch Road, Grandbois में 63 साल के 63 years old के श्री आनंद कुमार गजाधर श्री आनंद कुमार गजाधर जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थ है कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता गजाधर के घर Le Grand Branch Road, Grandbois से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजवेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 पीएम Denon Class Road, Goodlands में 87 साल के 87 years old की श्रीमती दिनमतिया सितुहल श्रीमती दिनमतिया सितुहल पैदाशी नाम बिहारी जो चांदो नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके घर Denon Road, Goodlands से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगोश Goodlands की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 पीएम महात्मा गांधी रोड पुत्रदो आमलेट में महात्मा गांधी रोड पुत्रदो आमलेट में विलेज हॉल के पीछे 71 वर्ष की 71 years old की श्रीमती प्रतिमा रामास्वामी पैदाशी नाम गंडौरी जो अपाप्रत नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे श्री शैलेन रामास्वामी के घर महात्मा गांधी रोड पुत्रदो आमलेट में विलेज हॉल के पीछे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 पीएम आपाजुलेन बासें कैट्रोबोर्ड में 87 साल के 87 years old की श्रीमती तुलसमा बप्पामा पैदाशी नाम बसवाना जो उमा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल शाम साढ़े चार बजे उनके घर आपाजुलेन बासें कैट्रोबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रोमेशन टुमारो एट 4:30 पीएम शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त शाम के लगभग 6:30 बजे हैं

आप लोगों की बारी भी आ गई है और इसी टाइम पर आप लोगों ने कहा कि चलिए उनको भी सुनने का मौका देते हैं। नमस्कार आदाब, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दिलों की आवाज कार्यक्रम। कैसे हैं जी, सब ठीक है ना? हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन हैं। थर्सडे की रात है और यहाँ पर रात की जो शुरुआत है इसका आगाज जो है यहाँ पर हम लोगों को महसूस हो रहा है। और ऐसे टाइम पर बहुत सारे लोग काम से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं और फंसे हुए ट्रैफिक में, और थोड़ा सा हम आराम हो करके ऐसे ऐसे गीत आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं जहाँ पर आपको महसूस होगा एक सुकून। जी हाँ बिल्कुल, हम आपको कहना चाहेंगे कि 6:30 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक नई सोच कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी। फिर उसके बाद 7 से 9 बजे तक दिलों की आवाज कार्यक्रम। और ऐसी टाइम पर आप हमें फोन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, 4-02-80-70 पर 4-02-80-70 पर, या फिर एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं 5250-6200। रात बाकी है और बात भी बाकी है, और ऐसे टाइम पर कुछ पाने के लिए भी हमारे यहाँ अभी जो इच्छा है, जो डिजायर है, अभी बाकी है।

इस वक्त रात की 6:38 मिनट हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। रात बाकी है और बात भी बाकी है और इसी टाइम पर नई सोच कार्यक्रम की पेशकश की जा रही है रात के 7 बजे तक का। हमारा एक ही विचार है जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको बहुत ही गौर से इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। अच्छी तरह से सुनना दोस्तों, कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और ख़ुद को कोसना शुरू करते हैं, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, कभी कभी एक महीने भी। लेकिन क्या जब हम लोग सही डिसीजन लेते हैं हम अपने आप को थैंक यू कहते हैं? बस कहते हैं ओ मैं तो बच गया यार, बस हो गया। हाँ वो तो हो गया, लेकिन क्या आपने खुद को थैंक यू कहा? कहना चाहिए मेरे दोस्त, अपने आप को थैंक यू इसलिए कहना चाहिए क्योंकि आपने उस डिसीजन को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार किया, आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट किया, आपने बहुत सारे लोगों की बातों को ध्यान में रख करके ये डिसीजन लिया, तब जा करके आपने ये ठोस कदम उठाया। इसका मतलब ये है एक थैंक यू तो बनता है।